कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: 当做那个。
1: Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना future संभालो, फिर हमारे future के बारे में सोचना।

0: इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है, खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।
1: जिस दर पे सभी एक है।
0: सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरि हरन के आवास में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अगला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज जबकि शनिवार का दिन है तो ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में पेश

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में महेंद्र कपूर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226611। पंडित जयशंकर जी की आवाज में चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं।

भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी प्रसून मुखर्जी की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए प्रसूत मुखर्जी की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश

रेडियो SBS के जरिए विपिन सचदेवा की आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश की गई है। चले प्रोग्राम में सुरेश वत्कर की आवाज में श्री हनुमान चालीसा पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर और सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।
1: आर्त व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाते हैं, आर्त की पुकार ही आरती है। आरती अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए की जाती है। पूजा में भूल से या प्रमादवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। 1, 5, 7 आदि विषम संख्या के दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। इष्ट देव की प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और नीचे से ऊपर तक 7 बार आरती घुमानी चाहिए।

कर प्रोग्राम में एक मिनट व्यतीत हो चुका है। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज शनिचर का दिन है, 22 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को अनहेलो खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग, शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, देश विदेश में जितनी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं, आप सभी को भी स्वागत किया जा रहा है। और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी के लिए हमेशा की तरह, रोजाना की तरह गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस स्वागत किया जा रहा है। तो चले यहाँ से पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी अब की बार प्रोग्राम में होगा और आपको हम ले चलते हैं एक और बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए पुरानी नगमे बस पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। मन्ना डे और लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं, मस्ती भरा है शबाब।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई मन्ना डे और लता जी की आवाज में की मस्ती भरा है शबान। मन्ना डे और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

मौसम है आशिकाना, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था पकीसा, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहेंगे तो अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन पर जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं स्टूडियो की ओर। किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा।

रेडियो SBS की जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे रेडियो SBS की जरिए पेश किया जा रहा है और पुरानी नगमे आप जरूर सुनते ही रहना। मुकेश और लता मंगेशकर प्रोग्राम में एक मंजिल राही दो फिर प्यार मिले।

बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर।

समग्र रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश होगा किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में,

किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था अधिकार, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में। मुकेश एंड लता प्रोग्राम में।

मुकेश और लता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है संगम।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आशा जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी है, फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए द नाइटिंगेल ऑफ एशिया, आशा जी की आवाज में अभी आपने सुना ये खास गाना। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश होगा मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

रेडियो SBS की सरिये मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

मित्रों भी और सुमन कल्याण भी आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पिछली गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अभी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम जब जब फूल खिले उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तो चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम जैसे को तैसा उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना है।

जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं।

होते हैं बातों से तो मानते वो नहीं, कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं, लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मानते वो नहीं। आ गई वो घड़ी बोल के पड़ी, आ मैं जरा तेरी बाहें मरोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या, बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी।

कैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या। बोल जैसे को कैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता।

हार्ट ऑफ द मिलियंस माइटी मुकेश के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर और सपना के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

दस्तरों में पेश की गई किशोर और सपना के आवास में ये गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई है सुनबलो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। अनवर प्रोग्राम में होगा एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है।

अनवर की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको लेकर चलते हैं।

Uit de film Jawani Diwani, Kishore Kumar en Asha ji ki awaaz mein ye gana bas program mein pesh ki gayi aap sabhi aur sabhi sunne walon ki seva mein. आपकी बार मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आज की प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है. सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11. मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में अब आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम जीने की राह. 1969 का फिल्म मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में.

भी मरहूम मोहम्मद रफीओं ने साथियों की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा जी की आवाज में चले मिलकर अब की बार ये गाना को सुनते हैं और फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

भिग्या चीना और साथी रे आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 24 पर दाग बराबर होता है 032-65-65-60।

ट्रॉफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुनकर और बेहद पसंद किया है। बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। चले एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर और गाना का बोल है ऐसे ना थे हम।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं रागा
2: इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड। क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर
4: लीजिए। रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

आसरों उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म डार्लिंग अदनान सामी एंड तुलसी कुमार प्रोग्राम में।

टाइम की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की उदित नारायण की आवाज में गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो एस बी एस के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चले अब की बार शान एन महालक्ष्मी आयर की आवाज में।

पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए हम आपको ले चलते हैं फिल्म दे दनादन, मिका सिंह, डोमिनिक और

रेडियो SBS की जरिए फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म से गाना पेश की गई डी ताली। चले प्रोग्राम में फिल्म वेलकम की ओर।

शर्मा और ऐश्वर्या की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई दबंग फिल्म का नाम था। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना क्यों हो रहा है, बार बार देखो फिल्म का नाम।

आज शनिचर है, शनिवार का दिन है और यहाँ से लोकल टाइम का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और लोकल टाइम का प्रोग्राम तकरीबन 2 बजे तक जरूर है और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। उमर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए उबर के आवास में ये गाना बस पेश की गई आसरो भी देखिए। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर सुन

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आसरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की सर ये जो पेश की गए शनिवार का दिन लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 030-262-6611। चले प्रोग्राम में लकी सिंह की ओर

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

असरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की सर ये जो पीस की गए हैं। चलिए अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं एक लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मरहूम शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में चले मिल

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, खास तौर पर मरहूम शहीद वाहिद हुसैन की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार उमर की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो वेस भी इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। चलिए अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। हमारा दूसरा हिस्सा का खास लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आखिरी हिस्सा भी तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमारा प्रोग्राम भी तकरीबन 2 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश होगा। चले मुख्य इस प्रोग्राम में रेडियो SBS Vanuit het mooiste stad van Nederland, Utrechtse Hertse, Salose, ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का फुल डिजिटल स्टूडियो से

रेडियो SBS के जरिए मुकेश के आवास में कासे को मिक्स बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं हॉलैंड देश के अंदर, हॉलैंड देश के बाहर, देश विदेश में। चले प्रोग्राम में एक चटनी गाना।

सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले बॉब मार्ली मिक्स।

रेडियो SBS के जरिए बॉब माली मिक्स आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले प्रोग्राम में मिस्टर राहुल।

रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में संजय की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: रहे न रहे चाहे हम और तुम। रेडियो वेस भी इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए आज की प्रोग्राम में एक बार फिर से सचिन की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये गाना पेश किया जा रहा है, चुम्मा दे देना।
1: अरे दिल जानी

सुनने वालों आहिस्ता आहिस्ता लोकल टाइम का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। तकरीबन 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा और लोकल टाइम का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी तकरीबन 2 बजे तक।

में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक आखिरी गाना आज की लोकल टाइम की प्रोग्राम में पेश किया जाएगी और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। अभी न्यूज और मौसमी समाचार के बाद RJ आंशलिक के जरिए बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी। मैं आप सभी सुनने वालों से कल सुबह ठीक 8 बजे फिर मिलूंगा। मैं था आपका खिदमत गुजार अबीन। आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड और हमारा आज का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 8 बजे भजन यात्रा प्रोग्राम।

0: bandjes op drie podia's, meer dan 100 stands, een grote kermisattractie, Boiti à la Condridoku, internationale doxa kookwedstrijd met koks uit Nederland, Suriname, India, Guyana en Surinidad. Dus mis het niet. Dylan de Daan uit Surinidad, zondag 23 augustus met groot vuurwerk als afsluiter. Mini Summerfest Fall, waar cultuur, muziek en familie samenkomen.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमनाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमनाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag en dat is...

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आर डी बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आर डी बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज में रहना बीत

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से, ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म वो कौन थी से, लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए। सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। दैट वॉज आउट द फिल्म लुक्का छुपी, ओरिजिनेल इज आउट द फिल्म अफलातून। In het programma Gitong Keleher via Radio SBS is het volgend liedje Tera Chehra Kitna Suhana Lagta Hai, gezongen door Jagjit Singh. U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl.

0: Vuurwerk als afsluiter. Midsummerfestival waar cultuur, muziek en familie samenkomen.
1: Is daar असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th ऑफ सितंबर अनफॉरगेटेबल 90s।
3: तू मेरा दिल भर है। शो आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स।
2: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

तू जहां भी जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। आई लव यू माई एंजल वॉज द फिल्म प्यारे मोहन एंड इस गज़ंग दूर कुनाल गांजावाला। Het volgende liedje via Radio SBS in het programma Gieton Kelleher is gezongen door Arijit Singh. Uit de film Holiday komt Aaj Dil Shayarana Lagta Hai.

0: लंका फूंक दिए जाकर गढ़लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

0: हो गए।
1: हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, गजल दोर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस आई द फिल्म चल मेरे भाई एंड इस गजल दोर अलका याचिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इज अ फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फॉर्म लीजिए इन het programma Gietum Kelleher via Radio SBS.

0: gratis op 3 podia's, meer dan 100 stands, een grote kermisattractie, Boiti à la Condridoku, internationale doxa kookwedstrijd met koks uit Nederland, Suriname, India, Guyana en Trinidad. Dus mis het niet. Dylan de Daan uit Trinidad, zondag 23 augustus met groot vuurwerk als afsluiter. Minus Summer Festival, waar cultuur, muziek en familie samenkomen.
1: किस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s।
3: के लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।